सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: से ज्यादा वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

आठवतात. कारण हा उमदा आणि जिगरबाज माणूस जसा पडद्यावर दिसला तसाच तो पडद्याबाहेरही होता, तसाच दिसला. घटा में छुपके सितारे फना नहीं होते, घटा में छुपके सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, मुस्कुरा के जियो, मुस्कुरा के जियो.